0: अरे आशिक की नजर है ये दिल चीर के रख देगी, मगरूर हुस्न का सर कदमों पे झुका देगी।
1: इनसे कह दो वो कोई और होंगे।
0: तो फिर आप क्या हैं?
1: मैं वो

कहा लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

0: वाली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। माई इस लॉटरी का नंबर मिला दे और जल्दी से बादल के नैया को पार लगा दे। अरे पांडू अभी तक मोतिया लॉटरी का रिजल्ट लेकर नहीं आई रे।
1: आती होगी गणपत भैया, तब तक माता जी का आशीर्वाद दे ले।
0: हाँ ले लो ले लो। जय जय जय जय जय जय जय जय हो महाकाली काली कलकत्ते वाली। करते दया